श्री दीप नर भगवान की जय, श्री सिमरवन जी भगवान की जय, श्री दीप नर भगवान की जय।

ओम श्री नरेन भगवान की जय। श्री देव पुरुषा महादेव की जय। श्री विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमात्मा स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: ओम श्री नरम भगवान
1: की जय।
0: श्री मांगीलाल जी
1: की जय।
2: श्रीदीप नारायण भगवान की जय।

0: श्री दीपनर भगवान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। नरम समर स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: श्रीदीपनारायण भगवान की जय।
1: श्री दीपनारायण भगवान की जय। स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: विद्दू and when is it thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam ta
1: Shiva koji kleše.
0: Da. Gdje gdje brak di, kada ga gri gri grag. Da do da di ka bdai ta re ge ge ge ge. एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

अलख पुरी सा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

0: ओम शलकपुरजि महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजि सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजि सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सब संत ऋषि महात्माओं की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।

गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन नारायण नारायण।

0: नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इंद्र रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा करही

0: नारायण भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे हैं, हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। Sat is the good things, very things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitting like this, say, do aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका क्या नाम, जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न who should be here first and then second and like this. Then we have all, so

इसी सत्य, सत्य क्या है, वो सत्य कहाँ है, वो सत्य कहाँ से आया है। सत्य केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है। वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है, और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है। छोटे होते हैं ना, ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर, बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस, इवन दैट देन इट इज सेड यस दिस इज वेरी गुड। सो चाइल्ड इज गोइंग फ्रंट एंड मदर इज बिहाइंड, ताकि द चिल्ड्रन कैन बी विद मदर वेरी नाइस एंड दैट एंड नॉट गोइंग आउट, देन वॉट हैपन इज समथिंग। सो सत्य, वो सत्य होता है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, वही सत्य कहा जा गया है। तो सत्य संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को but other one we will go this and we're going to sit like that. So when we come, you should come first already where you are sitting. So very nice satsang. To satsang ke bare mein ek bhajan lagao, ek bhajan lagao satsang ka, satsangiyon ki san hai na bhajan apna बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा, बाप जी का माधवानंद जी का है भाई, माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड is our land very much. You know that? It was that time, well, this all the Christians or dusre bhi jo hai na, they come inside. And they took the Indians all like this. So, don't go home. No school jana dena, kuch karna nahi tha. Only those who are little, learning very people, so they were like doctors and this or this, otherwise all people was abhi bhi aapko le rahe hain, abhi bhi unko barabar nahi jane dete hain, to phir kitna karte karte modi ji ke nahi, modi ji kya dusre, to wahan sifa kitna latak kiya wo wahan कहाँ पर बैठे रहे, लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरी वन दे ब्रॉट दिया ऑलरेडी टू इंडिया। सो इंडिया का कितना वेरी बिग बिग बिग, आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग, इंडिया इतना लंबा चौड़ा है, आई वॉज नॉट गिव, आई वेंट टू अदर कंट्रीज, बट आई सी somebody this and that, but how many countries have there, and all have different language, many language hai Bharat mein, lekin unhone sab karke Hindu bataya, aur Hindu kahan se, Hindu bahut dur se hai ye, kya nahi, हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ, हाँ
है नहीं, संस्कृत में तो है, सिंधु। हाँ तो सिंधु तक का है हमारा, इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना। तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है, लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी, बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस, और किसी के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है, तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस, सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट एंड देन इज एवरीवेयर या सब आई एम कमिंग ऑलवेज विद एरोप्लेन्स यस एंड आई सी देयर फ्रॉम दैट आई सी इट अवर इंडिया हमारा इधर से सो दैट ऑल माई डिसाइपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दे हैव ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दे प्रैक्टिस ही ऑल द टाइम्स एंड कमिंग डॉन्ट वेरी दे आर नॉट बट वी वॉन्ट टू कम टू हियर स्वामी जी है महेश्वरानंद गए तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ पहले मैंने कराया बट इस एंड आई टॉल दैम बट इट डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू एंड सो माय डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास

0: Sridipnaran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।